0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का जीवन दूसरों की सहायता के बिना इस पृथ्वी पर असंभव तो नहीं, पर निश्चित रूप से थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। मानव अपने में कितना भी उन्नतशील या सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसे किसी न किसी बात को लेकर दूसरे से मदद या सहायता हेतु आश्रित होना पड़ता है। यह हमारे लिए मानवीय संवेदना को व्यक्त करता है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मानव के रूप में हम अपने में पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। श्रोताओं, पास्का के छठवें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा मानव को दिए गए एक सहायक की चर्चा सुनते हैं। वह सहायक जो सदैव हमारे निकट रहता और हमें अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में मदद करता है, जिससे हम सही मार्ग का चुनाव कर सकें। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि क्या हम ईश्वर के द्वारा दिए गए अपने सहायक की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। क्या हम उनकी बातों को, जो हमारे लिए सलाह के रूप में आती है, सुनते हैं? क्या हम उस सहायक से वार्ता करते और उसे अपने जीवन में अहमियत देते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर के द्वारा मिले सहायक से एक अच्छा संबंध स्थापित करने को अग्रसर करें। विशेषकर हम उस आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में जान सकें, उन्हें पहचान सकें, जिससे हम उनके निर्देशानुसार उन सारी बातों का चुनाव कर सकें जो हमारे लिए सदैव बेहतर होती हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए गैर यहूदियों में सुसमाचार का तेजी से प्रसारित होने की बात कहता है। गैर यहूदियों के मध्य हम फिलिप को ईश वचन घोषित करते और कई चमत्कारों को पूरा करते हुए सुनते हैं, जिन्हें देखकर विश्वासियों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रेरित पेतरुस और योहन आकर बपतिस्मा प्राप्त नए दीक्षार्थियों पर अपना हाथ रखते और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। नए ख्रिस्तीय विश्वासियों का पवित्र आत्मा से अभियंजन हमें भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभियंजन स्वरूप मिली ईश्वरीय वरदानों की परख करने और उसके अनुरूप आचरण करने का निमंत्रण देता है। ईश्वर का आत्मा हमें सर्वप्रथम अपने विश्वास में सुदृढ़ करता और पुनर्जीवित प्रभु का साक्ष्य देने को प्रेरित करता है। यह हमें सभी प्रकार के भय और शंका से मुक्त कर अपने में स्वतंत्रता की अनुभूति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर के वे सुयोग्य साधन बनते हैं, जिनका उपयोग वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस भांति हम स्वयं का साक्ष्य नहीं देते, बल्कि उस ईश्वर का साक्ष्य देते हैं जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। श्रोताओं, हमारे जीवन में इस मनोभाव को आज का दूसरा पाठ व्यक्त करता है, जो संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया है। हमें प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखने और इसके साथ ही अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए कहा जाता है। हमारा अंतःकरण हमारे लिए और कुछ नहीं, बल्कि हृदय का वह आंतरिक स्थल है जिसे हम ईश्वरीय आत्मा के निवास स्थल स्वरूप पाते हैं, जहां पवित्र आत्मा हमें जीवन की सच्चाई, अच्छाई और भलाई पूर्ण बातों से रूबरू करते हैं। वे बातें हमारे लिए होती हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा और आराधना करते हुए अपने जीवन में ईश्वरीय दिव्य प्रेम, शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। अपने इस अनंत अनुभूति को दूसरों के संग साझा करने हेतु ईश्वर हमें प्रेरित करते और हमें स्वयं से बाहर उनके मध्य ले चलते हैं जिन्हें उनकी आशीष और कृपाओं अर्थात पवित्र आत्मा की जरूरत है। अपने शुद्ध अंतःकरण के कारण हम स्वयं में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि जो हम पर दोष लगाते उन्हें अपने में लज्जित होना पड़ता है। इस भांति ईश्वर हमें अपने अच्छे कार्यों का साक्षी बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं हमारे लिए किया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना हमें ईश्वर के प्रेम का एक साक्ष्य देता है। हम जिन्हें प्रेम करते और हृदय से चाहते हैं उन्हें हम उन सुंदर और अच्छी वस्तुओं को प्रदान करते हैं, इसी चाह के साथ कि वे चीजें जीवन भर उनके संग बनी रहें और उन्हें हमारे अमर प्रेम की याद दिलाए। ईश्वर हमारे संग ठीक वैसा ही करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया है जो सदैव हमारे संग निवास करती और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम बुराई और पापों में ना पड़े बल्कि उन्हें सुने और ईश्वर के प्रेम में सदैव बने रहें। यीशु अपने शर्तहीन प्रेम के कारण हमें अकेला या अनाथ नहीं छोड़ने की बात कहते हैं। अतः पिता ईश्वर की ओर से यीशु में दिया गया पवित्र आत्मा सदैव हमारे संग सहायक के रूप में रहते और चलते हैं। अपने इस आत्मा को यीशु ख्रिस्त सच्चाई का आत्मा कहते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेहतर चीजों के चुनाव हेतु मदद करते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें सुनते और उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करते हैं। ईश्वर के आत्मा से हमारी वार्ता एक शांतिमय वातावरण में होती है, जिसका उदाहरण स्वयं यीशु ने पर्वत की ऊंचाई में जाते हुए रात्रि पहर में और भोर के एकांत समय को अपने लिए प्रार्थना हेतु चुनाव करते हुए समझाया है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति एक निश्चल शांतिमय वातावरण में होती है, जहां हम शब्दों के स्वर को नहीं बल्कि मंद मंद श्वासन की गहराई को अनुभव करते हैं। यदि हम ईश्वर के संग ऐसे संबंध में प्रवेश करते तो हम उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करने के योग्य होते हैं। आइए हम अपने सहायक पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें शांति में अपने संग वार्ता करने की शिक्षा प्रदान करें, जिससे हम ईश्वर की दिव्य योजना को अपने लिए समझ सकें और उनके अनुरूप अपना जीवन यापन कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदवे ने माननीय फादर विजय पॉल रेड्डी दुगिमपुट्टी को तेलंगाना के वारंगल धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय धर्म प्रांत के प्रशासक हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष विजय पॉल रेड्डी का जन्म 8 जनवरी 1965 को भारत के मनुगोड्डा में हुआ था। हैदराबाद में सेंट जॉन्स रीजनल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र की पढ़ाई के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका पुरोहिताभिषेक 2 अप्रैल 1992 को वारंगल धर्म प्रांत के लिए हुआ था। 8 मई को पोम्पे एवं नेपल्स में अपनी पैतृक यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में पोप लियो चौदवे ने नेपल्स वासियों को न्याय, एकजुटता एवं सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित शांति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्ध होने की अपील की। पोप बनने की पहली सालगिरह पर पोम्पे एवं नेपल्स की यात्रा में पोप लियो चौदवे ने नेपल्स के बीचों बीच शानदार प्लेबिसितो प्रांगण में लगभग 50,000 लोगों का अभिवादन किया जो उनसे मिलने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्हें संबोधित कर उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, आपके सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। उनके अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए, जिसकी तुलना उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बर्नीनी के स्तंभों के गले लगाने से की, उन्होंने शहर की सामाजिक एवं आध्यात्मिक हालत पर ध्यान दिया। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए, जहाँ एमाउस के शिष्यों की कहानी है, उन्होंने नेपल्स को एक ऐसा शहर बताया जो अत्यधिक खूबसूरती और गहरे घाव दोनों से जाना जाता है। उन्होंने शहर से उठती आवाज को याद किया, सुंदरता की आवाजें लेकिन गरीबी, डर और भटकाव की भी। उनकी तुलना उन थके हुए और निराश शिष्यों से की जो सड़क पर पुनर्जीवित येसु से मिलते हैं। उनसे प्रश्न करते हुए पोप ने कहा, क्या सचमुच मायने रखता है? और नागरिकों को ऐसे माहौल में फिर से अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया जो अक्सर थकान, उदासीनता एवं सामाजिक बिखराव से कमजोर हो गया है। पोप ने कहा, भाइयों एवं बहनों, इस शहर में जीवन, इंसाफ एवं अच्छाई की चाह बढ़ती है, जिससे बुराई, निराशा एवं हार मानकर दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर खुद से पूछना चाहिए, असल में क्या मायने रखता है? उदासीनता की थकान के बजाय प्रतिबद्धता के जोश के साथ, बुराई के डर के बदले अच्छा करने की हिम्मत के साथ, बेपरवाही के बजाय घावों को भरने के साथ यात्रा फिर शुरू करने के लिए क्या जरूरी और आवश्यक है? उन्होंने कहा, नेपल्स आज एक बड़ी उलझन का सामना कर रहा है। पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी उस आर्थिक तेजी से मेल नहीं खा रहा है जो सच में पूरे सामाजिक समुदाय को जोड़ सके। शहर में अब भी एक सामाजिक विभाजन है जो न केवल केंद्र में बल्कि बाहरी इलाकों में भी साफ दिखता है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक केंद्र के बीच में भी। कई इलाकों में असमानता और गरीबी का एक असली भूगोल देखा जा सकता है जो लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु आपको हमेशा सुसमाचार के प्रति वफादार रखें और नेपल्स शहर को आशीर्वाद दें।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने कंसिस्ट्री हॉल में आज सुबह इंटर फुटबॉल मैनेजरों और खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिन्होंने पिछले रविवार को अपना 21वां सीरीज ए जीता था। संत पापा के साथ यह मुलाकात मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में परमा पर जीत के बाद पहले से ही हो रहे समारोहों को समाप्त करती है। यह एक परंपरा है जिसमें संत पापा आमतौर पर विजेताओं का स्वागत करते हैं। संत पापा ने उनका अभिवादन कर कहा, इस सुंदर अवसर पर मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो कड़ी मेहनत, टीम वर्क, अनुशासन और लगन की वजह से हासिल हुआ है, जिसे आपने पिछले मैच जैसे रोमांचक पलों में भी बनाए रखा है। संत पापा ने उन्हें अपने अनुभवों पर सोचने के लिए प्रेरित किया ताकि खासकर युवाओं को उनके विकास के लिए एक काम का संदेश दिया जा सके। संत पापा ने कहा, आजकल कई युवा आपको अपने हीरो के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और यह आप पर एक जिम्मेदारी डालता है जो प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है, और इसके लिए आपको एथलीट के तौर पर मूल्यों के गवाह बनने की जरूरत है। इसके बाद संत पापा ने लिखे हुए टेक्स्ट से हटकर समझाते हुए कहा, आजकल युवाओं को सच में रोल मॉडल की जरूरत है और आप जो करते हैं उसका उनकी जिंदगी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। आप यह पक्का करें कि बहुत से लोग आप में और आपके व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी को पहचानें। अपनी बधाई दोहराते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद लोगों को दिल से शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। उधर पिछले शुक्रवार को लेबनान में सल्वातोरियन धर्म बहनों के एक कॉन्वेंट और एक पुराने स्कूल को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह और इसराइली सेना के बीच गोलीबारी में फंसे कुछ क्रिश्चिय गांवों को भी तबाह कर दिया गया है और वहां के लोगों को खाली करा दिया गया है। मेलकाइट ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन लेबनानी सरकार संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रही है कि वे आम लोगों, उनकी संपत्ति और उनके धार्मिक संस्थानों की रक्षा करें ताकि इन गाँवों को चुपचाप खत्म न कर दिया जाए। उधर सीसीबीआई की कार्यकारी समिति ने पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के धर्म समाज की सिस्टर दीप्ति मिंज को महिला आयोग का सहयोगी सचिव नियुक्त किया है। सिस्टर दीप्ति मिंज को सामाजिक विकास और प्रेरितिक कार्यों में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनका काम ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े दलों के बीच रहा है। छत्तीसगढ़ असनाबहार में जन्मी सिस्टर दीप्ति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े जबलपुर के जेवियर संस्थान के विकास कार्य और अध्ययन से ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए किया है। उनके काम में स्वयं सहायता समूह बनाना, सहकारिता को बढ़ावा देना और नेतृत्व एवं क्षमता निर्माण प्रोग्राम चलाना शामिल है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, परियोजना समन्वयक और सामाजिक कार्य निदेशिका के रूप में अपना काम किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का जीवन दूसरों की सहायता के बिना इस पृथ्वी पर असंभव तो नहीं, पर निश्चित रूप से थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। मानव अपने में कितना भी उन्नतशील या सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसे किसी न किसी बात को लेकर दूसरे से मदद या सहायता हेतु आश्रित होना पड़ता है। यह हमारे लिए मानवीय संवेदना को व्यक्त करता है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मानव के रूप में हम अपने में पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। श्रोताओं, पास्का के छठवें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा मानव को दिए गए एक सहायक की चर्चा सुनते हैं। वह सहायक जो सदैव हमारे निकट रहता और हमें अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में मदद करता है, जिससे हम सही मार्ग का चुनाव कर सकें। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि क्या हम ईश्वर के द्वारा दिए गए अपने सहायक की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। क्या हम उनकी बातों को, जो हमारे लिए सलाह के रूप में आती है, सुनते हैं? क्या हम उस सहायक से वार्ता करते और उसे अपने जीवन में अहमियत देते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर के द्वारा मिले सहायक से एक अच्छा संबंध स्थापित करने को अग्रसर करे। विशेषकर हम उस आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में जान सकें, उन्हें पहचान सकें, जिससे हम उनके निर्देशानुसार उन सारी बातों का चुनाव कर सकें जो हमारे लिए सदैव बेहतर होती हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए गैर यहूदियों में सुसमाचार का तेजी से प्रसारित होने की बात कहता है। गैर यहूदियों के मध्य हम फिलिप को ईश वचन घोषित करते और कई चमत्कारों को पूरा करते हुए सुनते हैं, जिन्हें देखकर विश्वासियों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रेरित पेतरुस और योहन आकर बपतिस्मा प्राप्त नए दीक्षार्थियों पर अपना हाथ रखते और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। नए ख्रिस्तीय विश्वासियों का पवित्र आत्मा से अभियंजन हमें भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभियंजन स्वरूप मिली ईश्वरीय वरदानों की परख करने और उसके अनुरूप आचरण करने का निमंत्रण देता है। ईश्वर का आत्मा हमें सर्वप्रथम अपने विश्वास में सुदृढ़ करता और पुनर्जीवित प्रभु का साक्ष्य देने को प्रेरित करता है। यह हमें सभी प्रकार के भय और शंका से मुक्त कर अपने में स्वतंत्रता की अनुभूति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर के वे सुयोग्य साधन बनते हैं, जिनका उपयोग वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस भांति हम स्वयं का साक्ष्य नहीं देते, बल्कि उस ईश्वर का साक्ष्य देते हैं जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। श्रोताओं, हमारे जीवन में इस मनोभाव को आज का दूसरा पाठ व्यक्त करता है, जो संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया है। हमें प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखने और इसके साथ ही अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए कहा जाता है। हमारा अंतःकरण हमारे लिए और कुछ नहीं, बल्कि हृदय का वह आंतरिक स्थल है जिसे हम ईश्वरीय आत्मा के निवास स्थल स्वरूप पाते हैं, जहां पवित्र आत्मा हमें जीवन की सच्चाई, अच्छाई और भलाई पूर्ण बातों से रूबरू करते हैं। वे बातें हमारे लिए होती हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा और आराधना करते हुए अपने जीवन में ईश्वरीय दिव्य प्रेम, शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। अपने इस अनंत अनुभूति को दूसरों के संग साझा करने हेतु ईश्वर हमें प्रेरित करते और हमें स्वयं से बाहर उनके मध्य ले चलते हैं जिन्हें उनकी आशीष और कृपाओं अर्थात पवित्र आत्मा की जरूरत है। अपने शुद्ध अंतःकरण के कारण हम स्वयं में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि जो हम पर दोष लगाते उन्हें अपने में लज्जित होना पड़ता है। इस भांति ईश्वर हमें अपने अच्छे कार्यों का साक्षी बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं हमारे लिए किया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना हमें ईश्वर के प्रेम का एक साक्ष्य देता है। हम जिन्हें प्रेम करते और हृदय से चाहते हैं उन्हें हम उन सुंदर और अच्छी वस्तुओं को प्रदान करते हैं इसी चाह के साथ कि वे चीजें जीवन भर उनके संग बनी रहें और उन्हें हमारे अमर प्रेम की याद दिलाएं। ईश्वर हमारे संग ठीक वैसा ही करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया है जो सदैव हमारे संग निवास करती और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम बुराई और पापों में ना पड़े बल्कि उन्हें सुने और ईश्वर के प्रेम में सदैव बने रहें। यीशु अपने शर्तहीन प्रेम के कारण हमें अकेला या अनाथ नहीं छोड़ने की बात कहते हैं। अतः पिता ईश्वर की ओर से यीशु में दिया गया पवित्र आत्मा सदैव हमारे संग सहायक के रूप में रहते और चलते हैं। अपने इस आत्मा को यीशु ख्रिस्त सच्चाई का आत्मा कहते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेहतर चीजों के चुनाव हेतु मदद करते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें सुनते और उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करते हैं। ईश्वर के आत्मा से हमारी वार्ता एक शांतिमय वातावरण में होती है, जिसका उदाहरण स्वयं यीशु ने पर्वत की ऊंचाई में जाते हुए रात्रि पहर में और भोर के एकांत समय को अपने लिए प्रार्थना हेतु चुनाव करते हुए समझाया है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति एक निश्चल शांतिमय वातावरण में होती है, जहां हम शब्दों के स्वर को नहीं बल्कि मंद मंद श्वासन की गहराई को अनुभव करते हैं। यदि हम ईश्वर के संग ऐसे संबंध में प्रवेश करते तो हम उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करने के योग्य होते हैं। आइए हम अपने सहायक पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें शांति में अपने संग वार्ता करने की शिक्षा प्रदान करें, जिससे हम ईश्वर की दिव्य योजना को अपने लिए समझ सकें और उनके अनुरूप अपना जीवन यापन कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने माननीय फादर विजय पॉल रेड्डी दुगिनपुट्टी को तेलंगाना के वारंगल धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय धर्म प्रांत के प्रशासक हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष विजय पॉल रेड्डी का जन्म 8 जनवरी 1965 को भारत के मनुगोड्डा में हुआ था। हैदराबाद में सेंट जॉन्स रीजनल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र की पढ़ाई के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका पुरोहिताभिषेक 2 अप्रैल 1992 को वारंगल धर्म प्रांत के लिए हुआ था। 8 मई को पोम्पे एवं नेपल्स में अपनी प्रेरित यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में पोप लियो चौदहवें ने नेपल्स वासियों को न्याय, एकजुटता एवं सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित शांति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्ध होने की अपील की। पोप बनने की पहली सालगिरह पर पोम्पे एवं नेपल्स की यात्रा में पोप लियो चौदहवें ने नेपल्स के बीचों बीच शानदार प्लेबिसितो प्रांगण में लगभग 50,000 लोगों का अभिवादन किया जो उनसे मिलने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्हें संबोधित कर उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, आपके सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। उनके अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए, जिसकी तुलना उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बर्नीनी के स्तंभों के गले लगाने से की, उन्होंने शहर की सामाजिक एवं आध्यात्मिक हालत पर ध्यान दिया। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए, जहां एमाउस के शिष्यों की कहानी है, उन्होंने नेपल्स को एक ऐसा शहर बताया जो अत्यधिक खूबसूरती और गहरे घाव दोनों से जाना जाता है। उन्होंने शहर से उठती आवाज को याद किया, सुंदरता की आवाजें लेकिन गरीबी, डर और भटकाव की भी। उनकी तुलना उन थके हुए और निराश शिष्यों से की जो सड़क पर पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं। उनसे प्रश्न करते हुए पोप ने कहा, क्या सचमुच मायने रखता है? और नागरिकों को ऐसे माहौल में फिर से अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया जो अक्सर थकान, उदासीनता एवं सामाजिक बिखराव से कमजोर हो गया है। पोप ने कहा, भाइयों एवं बहनों, इस शहर में जीवन, इंसाफ एवं अच्छाई की चाह बढ़ती है जिससे बुराई, निराशा एवं हार मानकर दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर खुद से पूछना चाहिए, असल में क्या मायने रखता है? उदासीनता की थकान के बजाय प्रतिबद्धता के जोश के साथ, बुराई के डर के बदले अच्छा करने की हिम्मत के साथ, बेपरवाही के बजाय घावों को भरने के साथ यात्रा फिर शुरू करने के लिए क्या जरूरी और आवश्यक है? उन्होंने कहा, नेपल्स आज एक बड़ी उलझन का सामना कर रहा है। पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी उस आर्थिक तेजी से मेल नहीं खा रहा है जो सच में पूरे सामाजिक समुदाय को जोड़ सके। शहर में अब भी एक सामाजिक विभाजन है जो न केवल केंद्र में बल्कि बाहरी इलाकों में भी साफ दिखता है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक केंद्र के बीच में भी। कई इलाकों में असमानता और गरीबी का एक असली भूगोल देखा जा सकता है जो लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु आपको हमेशा सुसमाचार के प्रति वफादार रखें और नेपल्स शहर को आशीर्वाद दें।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने कंसिस्ट्री हॉल में आज सुबह इंटर फुटबॉल मैनेजरों और खिलाड़ियों से मुलाकात की जिन्होंने पिछले रविवार को अपना 21वां सीरीज ए जीता था। संत पापा के साथ यह मुलाकात मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में परमा पर जीत के बाद पहले से ही हो रहे समारोहों को समाप्त करती है। यह एक परंपरा है जिसमें संत पापा आमतौर पर विजेताओं का स्वागत करते हैं। संत पापा ने उनका अभिवादन कर कहा, इस सुंदर अवसर पर मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो कड़ी मेहनत, टीम वर्क, अनुशासन और लगन की वजह से हासिल हुआ है, जिसे आपने पिछले मैच जैसे रोमांचक पलों में भी बनाए रखा है। संत पापा ने उन्हें अपने अनुभवों पर सोचने के लिए प्रेरित किया ताकि खासकर युवाओं को उनके विकास के लिए एक काम का संदेश दिया जा सके। संत पापा ने कहा, आजकल कई युवा आपको अपने हीरो के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और यह आप पर एक जिम्मेदारी डालता है जो प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है, और इसके लिए आपको एथलीट के तौर पर मूल्यों के गवाह बनने की जरूरत है। इसके बाद संत पापा ने लिखे हुए टेक्स्ट से हटकर समझाते हुए कहा, आजकल युवाओं को सच में रोल मॉडल की जरूरत है और आप जो करते हैं उसका उनकी जिंदगी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। आप यह पक्का करें कि बहुत से लोग आप में और आपके व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी को पहचानें। अपनी बधाई दोहराते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद लोगों को दिल से शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। उधर पिछले शुक्रवार को लेबनान में सल्वातोरियन धर्म बहनों के एक कॉन्वेंट और एक पुराने स्कूल को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। हिजबुल्ला और इसराइली सेना के बीच गोलीबारी में फंसे कुछ क्रिश्चिय गांवों को भी तबाह कर दिया गया है और वहां के लोगों को खाली करा दिया गया है। मेलकाइट ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन लेबनानी सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रही है कि वे आम लोगों, उनकी संपत्ति और उनके धार्मिक संस्थानों की रक्षा करें ताकि इन गांवों को चुपचाप खत्म न कर दिया जाए। उधर CCBI की कार्यकारी समिति ने पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के धर्म समाज की सिस्टर दीप्ति मिंज को महिला आयोग का सहयोगी सचिव नियुक्त किया है। सिस्टर दीप्ति मिंज को सामाजिक विकास और प्रेरितिक कार्यों में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनका काम ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े दलों के बीच रहा है। छत्तीसगढ़ असनाबहार में जन्मी सिस्टर दीप्ति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े जबलपुर के जेवियर संस्थान के विकास कार्य और अध्ययन से ग्रामीण प्रबंधन में MBA किया है। उनके काम में स्वयं सहायता समूह बनाना, सहकारिता को बढ़ावा देना और नेतृत्व एवं क्षमता निर्माण प्रोग्राम चलाना शामिल है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, परियोजना समन्वयक और सामाजिक कार्य निदेशिका के रूप में अपना काम किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।
0: प्रेरितों का धर्म सार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र

0: अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: के
1: लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्ते एकता विभाग पर लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम वैटिकन के बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसलिए हम इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वैटिकन में कई विभाग हैं जो इसके कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। उन विभागों में से कुछ के बारे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग पर गौर करें। अपने नाम के अनुरूप ख्रिस्ती एकता विभाग का काम कातिक कलीसिया के अंदर एक सच्चे ख्रिस्ती एकता की भावना को बढ़ाना है और ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाने के लिए दूसरी कलीसियाओं एवं ख्रिस्ती समुदायों के साथ ख्रिस्ती एकता बातचीत के लिए प्रतिबद्ध होना है। ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाला विभाग उन सभी क्षेत्रों में सक्रिय है जो दूसरे ख्रिस्तीय कलीसियाओं और समुदायों के साथ भाईचारा के रिश्तों, सहयोग और धार्मिक बातचीत के द्वारा ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कूट कोच हैं और सचिव महाथमदश फ्लेपियो पाचे। अन्य कलीसियाओं और कलीसियाई समुदायों के साथ संबंधों को दो अनुभागों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, पूर्वी अनुभाग और पश्चिमी अनुभाग। पूर्वी अनुभाग बिजेंटाइन परंपरा की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं और पूर्वी रीति की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ साथ पूर्व की अर्मेनियाई कलीसिया के लिए है और पश्चिमी अनुभाग पश्चिम की अलग अलग कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के लिए है। ख्रिस्तीय एकता विभाग का इतिहास 5 जून 1960 को शुरू हुआ था जब संत पापा जॉन 23वें ने वैटिकन द्वितीय महासभा की तैयारी के लिए एक कमीशन के रूप में ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने हेतु सचिवालय का निर्माण किया था। इससे कातिक कलीसिया के ख्रिस्तीय एकता आंदोलन में आधिकारिक रूप से शामिल होने की शुरुआत हुई। सचिवालय ने महासभा के सामने ख्रिस्तीय एकता, गैर ख्रिस्तीय धर्मों और धार्मिक आजादी पर दस्तावेज तैयार किए और उन्हें प्रस्तुत भी किए और धर्म सैद्धांतिक कमीशन के साथ मिलकर दिव्य प्रकाशना पर धर्म सिद्धांत का संविधान प्रस्तुत किया। 1966 में वैटिकन द्वितीय महासभा समाप्त होने के बाद संत पापा पॉल 6वें ने ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय को वैटिकन की स्थायी निकाय के रूप में मान्यता दी। उसी साल कलीसिया के विश्व परिषद एवं ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय ने मिलकर पहली बार ख्रिस्तीय एकता सप्ताह के लिए प्रार्थना तैयार करने का फैसला किया। 1988 में प्रेरित संविधान पास्टर बोनस के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सचिवालय को ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए परमधम पीठे परिषद में बदल दिया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ संत पापा फ्रांसिस ने इसका नाम बदलकर ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग कर दिया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेदिकाते एवंजेलियम में बताया गया है, विभाग का काम काते कलीसिया के अंदर और दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ रिश्तों में ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाना है। विभाग द्वितीय वैटिकन महासभा एवं महासभा के बाद ख्रिस्तीय एकता पर संत पापाओं की धर्म शिक्षाओं को लागू करती है और ख्रिस्तीय एकता की गतिविधियों को निर्देशित, समन्वित एवं विकसित करने के लिए उनकी सही व्याख्या सुनिश्चित करती है। यह ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की सभाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के दूसरे संस्थानों, वैटिकन से जुड़े कार्यालयों और दूसरी कलीसियाओं तथा कलीसियाई समुदायों के साथ ख्रिस्तीय एकता प्रयासों को समन्वित करती है। विभाग दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ संबंध स्थापित करती और पहले पोप से सवाल पूछती और एकता को बढ़ावा देने के लिए ई शास्त्रीय बातचीत एवं चर्चा को बढ़ावा देती है। यह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न ख्रिस्तीय एकता सभाओं में भाग लेने के लिए ई शास्त्रीय वार्ता के कार्तिक सदस्यों, पर्यवेक्षकों और प्रतिनिधियों को चुने और कार्तिक कलीसिया की महत्वपूर्ण सभाओं एवं कार्यक्रमों में दूसरी कलीसियाओं और समुदाय के पर्यवेक्षकों या प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। विभाग में यहूदी धर्म के साथ धार्मिक संबंधों के लिए कमीशन भी शामिल है, जिससे कैथोलिक एवं यहूदियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। कार्डिनल कोच याद करते हैं कि पिछले 60 सालों में ख्रिस्तियों के बीच वार्ता ने हमें इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करने में मदद की है। उदाहरण के लिए वे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ ख्रिस्त शास्त्र की घोषणा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने 1500 साल के विवाद को खत्म कर दिया। सबसे खास बात यह है कि ख्रिस्ते अब एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि ख्रिस्त में भाई बहन मानते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2022 में ख्रिस्तीय एकता महासभा में अपना भाषण देते हुए आगे बढ़ने और साथ चलने की अपील की थी। यह सच है कि ख्रिस्तीय एकता काम बहुत जरूरी है और हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम एकता के रास्ते पर चलने का इंतजार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये शास्त्री एक समझौते पर नहीं पहुंच जाते। पोप फ्रांसिस ने आगे कहा, एक महान ऑर्थोडॉक्स ये शास्त्री ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें पता है कि ये शास्त्री कब तक सहमत होंगे। जवाब में उन्होंने कहा, अंतिम न्याय के एक दिन बाद, अर्थात पूर्ण सहमति मुश्किल है। लेकिन इस बीच संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम भाइयों की तरह चलें, मिलकर प्रार्थना करें, उदारता के कार्य करें, सच्चाई की तलाश करें और यह भाईचारा सभी के लिए है। इस तरह ख्रिस्तीय एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस तरह ख्रिस्तीय एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने का प्रोत्साहन देता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्तीय एकता विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की ममता, लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, परिवार में बच्चों की परवरिश माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, पर कभी कभी पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार की देखरेख, बच्चों की परवरिश का भार माता के जिम्मे आता है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। नौकरी ना मिलने पर वो घर घर बर्तन मांझकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती और परिवार चलाती हैं। बच्चे पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। उनमें दुख सहने और धैर्य रखने की शक्ति होती है। वे माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। पर अगर परिवार में माता की अचानक मृत्यु हो जाए तो साधारणतः बच्चों के जीवन में माता का स्थान पिता नहीं ले पाता है। अगर संयुक्त परिवार हो और घर में दादा दादी हो तो बच्चों की देखभाल हो जाती है, अन्यथा पिता अपने बच्चों के लिए नई माँ ले आता है। हाँ, कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो बखूबी माता और पिता दोनों की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। पर अगर पिता को शराब की लत लग जाए, नौकरी ना हो, ऐसे में बच्चों की परवरिश की आप कल्पना कर सकते हैं। आज की नाटिका में बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित ममता को अपनी पड़ोसन अमन की माँ का प्यार और मार्गदर्शन मिल जाए तो ममता जैसी अनेकों युवतियों की जिंदगी संवर जाएगी। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल की लिखी नाटिका माँ की ममता।
1: रो क्या रही है, चला चलिए यहाँ से, आना मत दोबारा यहाँ। घर की इज्जत नीलाम कर रही है, तुझे खाने को नहीं मिलता है? इंसान दो रोटी ही खाता है, अमीर गरीब सब यही खाते हैं, दाल रोटी। फिर भी लोगों को और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
2: अरे क्या हुआ बेटी, मैं 2-3 दिन से बाहर खड़े होकर तुम्हें रोते हुए देखती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
3: आंटी, आप नहीं आई हो ना इस फ्लैट में, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों रोती हूँ।
2: अरे पर बताओ तो सही, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे देखा नहीं जाता बेटा, बड़ी तकलीफ होती है मुझे।
3: आंटी, इस फ्लैट में पहले जो स्टूडेंट रहते थे ना, वो इसी कारण से चले गए।
2: हाँ हाँ, रो मत बेटा, आराम से।
3: पापा की वजह से रोज शराब पीकर आते हैं और चिल्ला चोट करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते। अब आप ही बताओ आंटी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ?
2: रो मत बेटा, रो मत। एक बात बता, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा, घर में और कोई है कि नहीं?
3: नहीं आंटी, घर में और कोई नहीं है, बस पापा और मैं। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, उन्हें कैंसर था तब मैं बहुत छोटी थी। बस बस माँ की धुंधली धुंधली यादें मेरे दिमाग में है आंटी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये देखिए मेरी माँ की तस्वीर, बहुत प्यारी थी मेरी माँ।
2: हाँ बेटा, माँ बड़ी प्यारी होती है, पर तुम्हारे पापा को तुमसे क्या परेशानी है, तुम्हें तो खूब प्यार से रखना चाहिए उन्हें।
3: परेशानी ये है आंटी कि मैं डांस करती हूँ और उन्हें मेरा नाचना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं होटल में डांस करती हूँ।
2: अरे तो ये छोड़ क्यों नहीं देती बेटा, होटलों में डांस करना सच में अच्छा नहीं है।
3: हाँ आंटी, मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, एक यही हुनर है मेरे पास। पापा तो कुछ काम नहीं करते, थोड़े दिन कहीं नौकरी कर लेते हैं बस, और फिर छोड़ देते हैं। मुझे फिर डांस करना पड़ता है क्योंकि इससे मुझे कुछ रुपये मिल जाते हैं, इसी से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं हमारी। साथ में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है किसी तरह।
2: देखो बेटा, मैं बात करूं क्या तुम्हारे पापा से? मैं समझाती हूँ उसे।
3: अरे नहीं नहीं आंटी, आप बुरी बन जाओगी, आपको ही भला बुरा कहने लगेंगे पापा।
2: अरे कहने दे बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समझाने से कुछ असर उन पर हो जाए तो मैं उनकी खरी खोटी सुनने को भी तैयार हूँ। आजा आजा बेटा, अंदर आजा। मैं और मेरा बेटा रहते हैं। पति बहुत पहले गुजर गए, बेटा किसी कंपनी में मैनेजर है। जिंदगी हमारी ठीक ठाक ही चल रही है, पर तुम्हारे दुख ने मुझे और दुखी कर दिया बेटा।
3: अरे नहीं आंटी, आप दिल पर मत लो, मेरा तो ये सब रोज का है। माँ नहीं है ना, माँ होती तो।
2: अरे अरे मत रो बेटा, मत रो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। बुरे दिन सदा नहीं रहते हैं। मत रो मेरे बच्चे, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। ले पानी पी ले, ठीक है? मैं चाय लेकर आती हूँ, तू यही आराम कर, बैठ आराम से। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सुशील है, अपने दम पर काम करती है, घर चलाती है। आप इस तरह हमेशा शराब पीकर हंगामा क्यों करते हैं भाई साहब? आखिर वो आपकी बेटी है।
1: देखो मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। अरे ये डांसर है, होटलों में नाचती है गाती है, जो मुझे पसंद नहीं है बस।
2: अरे तो आप काम करना चालू कर दीजिए ना भाई साहब, उसको बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: मैं काम? मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे जाओ यहाँ से, उपदेश देने चली आई मुझे, तुम अपने घर रख लो उसे, ऐसा है तो चले आ यहाँ पे उपदेश देने।
2: ममता मेरी बात सुन बेटा।
3: हाँ।
2: तुम मेरी एक सलाह मानोगी?
3: हाँ।
2: तुम होटलों में डांस करने के बजाय डांस क्लास चलाना शुरू कर दो, तुमको पैसा भी मिल जाएगा और नाम भी खराब नहीं होगा।
3: आंटी आपका आइडिया तो अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ।
2: हाँ बेटा ऐसा ही करो तुम। देख बेटा अमन,
4: हाँ?
2: पड़ोस में ममता नाम की लड़की रहती है, बड़ी भली है, डांस कर अपनी जीविका चलाती है। माँ नहीं है बेचारी की और बाप उसका शराबी है। तू उसे एक बार देख लेता तो।
4: माँ मैंने उसे देखा है, सुंदर भी है पर हमेशा उसका सिर नीचे रहता है।
2: हर क्या करे बेचारी, अपने बाप के कारण शर्मिंदा है। बाप शराब जो पीता है उसे घर से बाहर भी निकाल देता है।
4: ओ।
2: अकेली है पर बहुत अच्छी है बेटा। अब तू कहे तो उससे बात करूं, उसे माँ भी मिल जाएगी।
4: अब तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है माँ।
2: भाई साहब आपकी लड़की सुधर गई है, वो अपना डांस क्लास चलाएगी और आपकी लड़की मुझे पसंद है। भाई साहब अपने लड़के के लिए उसका हाथ आपसे मांगने आई हूँ, अब मंजूर है क्या आपको?
4: क्या? अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बहन जी, मेरी बच्ची का जीवन समझ जाएगा। मुझे भी ममता पसंद है पापा जी, पर एक शर्त है, आज से आप शराब नहीं पियेंगे।
1: ठीक है मंजूर है मंजूर है। तू खुश है ना ममता?
3: हाँ पापा, माँ मिल गई मुझे, अब और क्या चाहिए।
1: हाँ बेटा।
0: माँ की ममता। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमित सिंह, समता भोरेकर, भवानी कोल और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्ते एकता विभाग पर लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम वैटिकन के बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसलिए हम इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वैटिकन में कई विभाग हैं जो इसके कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। उन विभागों में से कुछ के बारे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग पर गौर करें। अपने नाम के अनुरूप ख्रिस्ती एकता विभाग का काम कार्तिक कलीसिया के अंदर एक सच्ची ख्रिस्ती एकता की भावना को बढ़ाना है और ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाने के लिए दूसरी कलीसियाओं एवं ख्रिस्ती समुदायों के साथ ख्रिस्ती एकता बातचीत के लिए प्रतिबद्ध होना है। ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाला विभाग उन सभी क्षेत्रों में सक्रिय है जो दूसरे ख्रिस्तीय कलीसियाओं और समुदायों के साथ भाईचारा के रिश्तों, सहयोग और धार्मिक बातचीत के द्वारा ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कूट कोच हैं और सचिव महाथमदश फ्लेपियो पाचे। अन्य कलीसियाओं और कलीसियाई समुदायों के साथ संबंधों को दो अनुभागों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, पूर्वी अनुभाग और पश्चिमी अनुभाग। पूर्वी अनुभाग बिजेंटाइन परंपरा की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं और पूर्वी रीति की ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ साथ पूर्व की अर्मेनियाई कलीसिया के लिए है और पश्चिमी अनुभाग पश्चिम की अलग अलग कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के लिए है। ख्रिस्तीय एकता विभाग का इतिहास 5 जून 1960 को शुरू हुआ था जब संत पापा जॉन 23वें ने वैटिकन द्वितीय महासभा की तैयारी के लिए एक कमीशन के रूप में ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने हेतु सचिवालय का निर्माण किया था। इससे कार्तिक कलीसिया के ख्रिस्तीय एकता आंदोलन में आधिकारिक रूप से शामिल होने की शुरुआत हुई। सचिवालय ने महासभा के सामने ख्रिस्तीय एकता, गैर ख्रिस्तीय धर्मों और धार्मिक आजादी पर दस्तावेज तैयार किए और उन्हें प्रस्तुत भी किए और धर्म सैद्धांतिक कमीशन के साथ मिलकर दिव्य प्रकाशना पर धर्म सिद्धांत का संविधान प्रस्तुत किया। 1966 में वैटिकन द्वितीय महासभा समाप्त होने के बाद संत पापा पॉल 6वें ने ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय को वैटिकन की स्थायी निकाय के रूप में मान्यता दी। उसी साल कलीसिया के विश्व परिषद एवं ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय ने मिलकर पहली बार ख्रिस्तीय एकता सप्ताह के लिए प्रार्थना तैयार करने का फैसला किया। 1988 में प्रेरित संविधान पास्टर बोनस के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सचिवालय को ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए परमधम पीठ परिषद में बदल दिया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम के साथ संत पापा फ्रांसिस ने इसका नाम बदलकर ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग कर दिया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम में बताया गया है, विभाग का काम काते कलीसिया के अंदर और दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ रिश्तों में ख्रिस्तों के बीच एकता वापस लाना है। विभाग द्वितीय वैटिकन महासभा एवं महासभा के बाद ख्रिस्तीय एकता पर संत पापाओं की धर्म शिक्षाओं को लागू करती है और ख्रिस्तीय एकता की गतिविधियों को निर्देशित, समन्वित एवं विकसित करने के लिए उनकी सही व्याख्या सुनिश्चित करती है। यह ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की सभाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के दूसरे संस्थानों, वैटिकन से जुड़े कार्यालयों और दूसरी कलीसियाओं तथा कलीसियाई समुदायों के साथ ख्रिस्तीय एकता प्रयासों को समन्वित करती है। विभाग दूसरी कलीसियाओं एवं कलीसियाई समुदायों के साथ संबंध स्थापित करती और पहले पोप से सवाल पूछती और एकता को बढ़ावा देने के लिए ई शास्त्रीय बातचीत एवं चर्चा को बढ़ावा देती है। यह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न ख्रिस्तीय एकता सभाओं में भाग लेने के लिए ई शास्त्रीय वार्ता के कार्तिक सदस्यों, पर्यवेक्षकों और प्रतिनिधियों को चुने और कार्तिक कलीसिया की महत्वपूर्ण सभाओं एवं कार्यक्रमों में दूसरी कलीसियाओं और समुदाय के पर्यवेक्षकों या प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। विभाग में यहूदी धर्म के साथ धार्मिक संबंधों के लिए कमीशन भी शामिल है, जिससे कैथोलिक एवं यहूदियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। कार्डिनल कोच याद करते हैं कि पिछले 60 सालों में ख्रिस्तियों के बीच वार्ता ने हमें इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करने में मदद की है। उदाहरण के लिए वे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ ख्रिस्त शास्त्र की घोषणा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने 1500 साल के विवाद को खत्म कर दिया। सबसे खास बात यह है कि ख्रिस्ते अब एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि ख्रिस्त में भाई बहन मानते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2022 में ख्रिस्तीय एकता महासभा में अपना भाषण देते हुए आगे बढ़ने और साथ चलने की अपील की थी। यह सच है कि ख्रिस्तीय एकता काम बहुत जरूरी है और हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम एकता के रास्ते पर चलने का इंतजार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये शास्त्री एक समझौते पर नहीं पहुंच जाते। पोप फ्रांसिस ने आगे कहा, एक महान ऑर्थोडॉक्स ये शास्त्री ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें पता है कि ये शास्त्री कब तक सहमत होंगे। जवाब में उन्होंने कहा, अंतिम न्याय के एक दिन बाद, अर्थात पूर्ण सहमति मुश्किल है। लेकिन इस बीच संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम भाइयों की तरह चलें, मिलकर प्रार्थना करें, उदारता के कार्य करें, सच्चाई की तलाश करें और यह भाईचारा सभी के लिए है। इस तरह ख्रिस्तीय एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस तरह ख्रिस्तीय एकता विभाग सभी ख्रिस्तों को भाईचारा की भावना से ईश्वर के लिए काम करते रहने का प्रोत्साहन देता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के ख्रिस्तीय एकता विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की ममता। लेखिका है भवानी कौर। श्रोताओं, परिवार में बच्चों की परवरिश माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, पर कभी कभी पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार की देखरेख बच्चों की परवरिश का भार माता के जिम्मे आता है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। नौकरी ना मिलने पर वो घर घर बर्तन मांझकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती और परिवार चलाती हैं। बच्चे पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। उनमें दुख सहने और धैर्य रखने की शक्ति होती है। वे माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। पर अगर परिवार में माता की अचानक मृत्यु हो जाए तो साधारणतः बच्चों के जीवन में माता का स्थान पिता नहीं ले पाता है। अगर संयुक्त परिवार हो और घर में दादा दादी हो तो बच्चों की देखभाल हो जाती है, अन्यथा पिता अपने बच्चों के लिए नई माँ ले आता है। हाँ, कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो बखूबी माता और पिता दोनों की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। पर अगर पिता को शराब की लत लग जाए, नौकरी ना हो, ऐसे में बच्चों की परवरिश की आप कल्पना कर सकते हैं। आज की नाटिका में बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित ममता को अपनी पड़ोसन अमन की माँ का प्यार और मार्गदर्शन मिल जाए तो ममता जैसी अनेकों युवतियों की जिंदगी संवर जाएगी। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल की लिखी नाटिका माँ की ममता।
1: रो क्या रही है, चला चलिए यहाँ से, आना मत दोबारा यहाँ। घर की इज्जत नीलाम कर रही है, तुझे खाने को नहीं मिलता है? इंसान जो रोटी ही खाता है, अमीर गरीब सब यही खाते हैं, दाल रोटी। फिर भी लोगों को और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए।
2: अरे क्या हुआ बेटी, मैं 2-3 दिन से बाहर खड़े होकर तुम्हें रोते हुए देखती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
3: आंटी, आप नहीं आई हो ना इस फ्लैट में, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों रोती हूँ।
2: अरे पर बताओ तो सही, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे देखा नहीं जाता बेटा, बड़ी तकलीफ होती है मुझे।
3: आंटी, इस फ्लैट में पहले जो स्टूडेंट रहते थे ना, वो इसी कारण से चले गए।
2: हाँ हाँ, रो मत बेटा, आराम से।
3: पापा की वजह से रोज शराब पीकर आते हैं और चिल्ला चोट करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते। अब आप ही बताओ आंटी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ?
2: रो मत बेटा, रो मत। एक बात बता, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा, घर में और कोई है कि नहीं?
3: नहीं आंटी, घर में और कोई नहीं है, बस पापा और मैं। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, उन्हें कैंसर था तब मैं बहुत छोटी थी। बस बस माँ की धुंधली धुंधली यादें मेरे दिमाग में हैं आंटी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये देखिए मेरी माँ की तस्वीर, बहुत प्यारी थी मेरी माँ।
2: हाँ बेटा, माँ बड़ी प्यारी होती है, पर तुम्हारे पापा को तुमसे क्या परेशानी है, तुम्हें तो खूब प्यार से रखना चाहिए उन्हें।
3: परेशानी ये है आंटी कि मैं डांस करती हूँ और उन्हें मेरा नाचना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं होटल में डांस करती हूँ।
2: अरे तो ये छोड़ क्यों नहीं देती बेटा, होटलों में डांस करना सच में अच्छा नहीं है।
3: हाँ आंटी, मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, एक यही हुनर है मेरे पास। पापा तो कुछ काम नहीं करते, थोड़े दिन कहीं नौकरी कर लेते हैं बस, और फिर छोड़ देते हैं। मुझे फिर डांस करना पड़ता है क्योंकि इससे मुझे कुछ रुपये मिल जाते हैं, इसी से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं हमारी। साथ में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है किसी तरह।
2: देखो बेटा, मैं बात करूं क्या तुम्हारे पापा से? मैं समझाती हूँ उसे।
3: अरे नहीं नहीं आंटी, आप बुरी बन जाओगी, आपको ही भला बुरा कहने लगेंगे पापा।
2: अरे कहने दे बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समझाने से कुछ असर उन पर हो जाए तो मैं उनकी खरी खोटी सुनने को भी तैयार हूँ। आजा आजा बेटा, अंदर आजा। मैं और मेरा बेटा रहते हैं। पति बहुत पहले गुजर गए, बेटा किसी कंपनी में मैनेजर है। जिंदगी हमारी ठीक ठाक ही चल रही है, पर तुम्हारे दुख ने मुझे और दुखी कर दिया बेटा।
3: अरे नहीं आंटी, आप दिल पर मत लो, मेरा तो ये सब रोज का है। माँ नहीं है ना, माँ होती तो।
2: अरे अरे मत रो बेटा, मत रो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। बुरे दिन सदा नहीं रहते हैं, मत रो मेरे बच्चे, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। ले पानी पी ले, ठीक है? मैं चाय लेकर आती हूँ, तू यहीं आराम कर, बैठ आराम से। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सुशील है, अपने दम पर काम करती है, घर चलाती है। आप इस तरह हमेशा शराब पीकर हंगामा क्यों करते हैं भाई साहब? आखिर वो आपकी बेटी है।
1: देखो मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। अरे ये डांसर है, होटलों में नाचती है गाती है, जो मुझे पसंद नहीं है बस।
2: अरे तो आप काम करना चालू कर दीजिए ना भाई साहब, उसको बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: मैं काम? मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे जाओ यहाँ से, उपदेश देने चली आई मुझे, तुम अपने घर रख लो उसे, ऐसा है तो चले आए यहाँ पे उपदेश देने।
2: ममता मेरी बात सुन बेटा।
3: हाँ।
2: तुम मेरी एक सलाह मानोगी?
3: हाँ।
2: तुम होटलों में डांस करने के बजाय डांस क्लास चलाना शुरू कर दो, तुमको पैसा भी मिल जाएगा और नाम भी खराब नहीं होगा।
3: आंटी आपका आइडिया तो अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ।
2: हाँ बेटा ऐसा ही करो तुम। देख बेटा अमन,
4: हाँ?
2: पड़ोस में ममता नाम की लड़की रहती है, बड़ी भली है, डांस कर अपनी जीविका चलाती है। माँ नहीं है बेचारे की और बाप उसका शराबी है, तू उसे एक बार देख लेता तो।
4: माँ मैंने उसे देखा है, सुंदर भी है पर हमेशा उसका सिर नीचे रहता है।
2: अरे क्या करे बेचारी, अपने बाप के कारण शर्मिंदा है। बाप शराब जो पीता है उसे घर से बाहर भी निकाल देता है।
4: ओह
2: अकेली है पर बहुत अच्छी है बेटा, अब तू कहे तो उससे बात करूं, उसे माँ भी मिल जाएगी।
4: अब तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है माँ।
2: भाई साहब आपकी लड़की सुधर गई है, वो अपना डांस क्लास चलाएगी और आपकी लड़की मुझे पसंद है। भाई साहब अपने लड़के के लिए उसका हाथ आपसे मांगने आई हूँ, अब मंजूर है क्या आपको?
4: क्या? अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बहन जी, मेरी बच्ची का जीवन समझ जाएगा।
5: मुझे भी ममता पसंद है पापा जी, पर एक शर्त है, आज से आप शराब नहीं पियेंगे।
1: ठीक है मंजूर है मंजूर है। तू खुश है ना ममता?
3: हाँ पापा, माँ मिल गई मुझे, अब और क्या चाहिए।
1: हाँ बेटा।
0: माँ की ममता। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमित सिंह, समता भोरेकर, भवानी कोल और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।